मा जाम कति धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun.

जाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's safe.